0: Luister Radio SBS op je mobiel en computer via radiosbs.nl en op alle internetradio.
1: जिक्र तुम्हारा आ ही जाता है हमारी बातों में, हर शख्स जो हमसे मिलता है यही कहता है, बस तुम्हारा ही चेहरा नजर आता है हमारी आंखों में।

0: Non-stop de allerbeste hits op Radio SBS.
1: क्या हुआ?
2: वो तो
1: क्यूट है ना?
2: अरे पहलवान है,
1: पर तुमसे प्यार करती है।
2: हो नहीं सकता।
1: और तुम्हें भी उससे प्यार करना चाहिए।
2: हो नहीं सकता।
1: वो तुम्हें पकड़ने यही आ रही है।
2: ये हो नहीं सकता।
3: होनी को तो कुछ भी हो सकता है मेरी श्याम।

सभी सुनने वालों की सेवा में मेरे तरफ से हर एक को सादर नमस्कार और आदाब सलाम। ये है ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन रेडियो SBS का प्रोग्राम जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। जो बीमार या लाचार है भगवान से तंदुरुस्त के लिए प्रार्थना या तो अल्लाह से दुआ किया जा रहा है उन सभी के दुख और गमी हमेशा के लिए दूर करने के लिए। जिन लोगों के घर पर खुशियां ही खुशियां है, शादी सालगिरह विवाह संस्कार जन्मदिन या तो प्यारा प्यारा बच्चा पैदा हुआ है, तहे दिल से बधाई और मुबारकबाद पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम के तरफ से। सुनने वालों आज शनिचर शनिवार का दिन है, 8 तारीख अगस्त का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। 7 तारीख 8 अगस्त का प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। आप सभी सुनने वालों को शुभ सुबह शुभ दिन पेश किया जा रहा है, शुभ वीकेंड आप सभी सुनने वालों को बस पेश किया जा रहा है। हरी की ओर देखा जाए 8 बजकर प्रोग्राम में 4 मिनट व्यतीत हो चुका है। सभी इन्फॉर्मेशन के लिए इन्फो के लिए टेलीफोन नंबर है 0325656560। स्टूडियो का टेलीफोन नंबर और रेडियो SBS का ऐप नंबर 0302626611। वेबसाइट होता है radiosbs.nl। उसी वेबसाइट के जरिए आप मेल कर सकते हैं और उसी वेबसाइट के जरिए अपना मोबाइल टेलीफोन के जरिए भी आप रेडियो SBS का ऐप पर ऐप कर सकते हैं। उसी वेबसाइट के जरिए दुनिया की कोने कोने में अपना मोबाइल टेलीफोन मोबाइल फोन के जरिए टैबलेट आईपैड कंप्यूटर के जरिए भी हमारा प्रोग्राम को आप सुन सकते हैं। सभी इंटरनेट रेडियो के जरिए और DAB प्लस रेडियो के जरिए हॉलैंड देश के बीच में मिडन नीदरलैंड और प्रोविंसी साउथ हॉलैंड में अपना मोटरकार में अपना घरों में ये प्रोग्राम को आप सुन सकते हैं। मैं हूं आपका खिदमत गुजार रबीन। यहां से प्रोग्राम भजन यात्रा आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। भजन यात्रा प्रोग्राम का पहला भजन हमेशा होता है हरिहरन की आवाज में सुबह सुबह लो शिव का नाम, पेश किया जा रहा है हमारी सभी सुनने वालों और सभी भक्त प्राणियों के लिए।

रेडियो SBS के जरिए पेश की गई हरिहरन की आवाज में सुबह सुबह लो शिव का नाम, हरिहरन की आवाज में ये सुंदर सा भजन आप सभी सुनने वालों के लिए, सभी भक्त प्राणियों के लिए बस पेश की गई। 8:12 वेटेड हो चुका है। प्रोग्राम भजन यात्रा आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। शनिवार का दिन है, 8 अगस्त का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। सभी को एक बार फिर से शुभ सुबह, शुभ दिन, गुड मॉर्निंग कहा जा रहा है। शुभ वीकेंड, हैव अ नाइस वीकेंड। और आज का मौसम खूबसूरत सुहाना मौसम होने वाले है। इस वक्त हम बाहर की ओर देखते हैं तो धूप ही धूप का मौसम, गर्मी सा मौसम होने वाले है आज भी। तो आप सभी सुनने वालों को शुभ दिन। चले प्रोग्राम में पैमला जैन की आवाज में अगला भजन जो पेश किया जा रहा है, एक सुंदर सा श्री हनुमान जी का भजन आज के प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है।

जैन की आवाज में ये सुंदर सा भजन आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश की गए। श्री हनुमान जी का भजन बस प्रोग्राम में पेश की गए। आज शनिवार की खास सुबह की प्रोग्राम में प्रोग्राम भजन यात्रा में अभी आपने सुना, जबकि 9 मिनट बाकी है सुबह 8:30 बजे नेह मिनटन फोर हाफ नेह स्टूडियो टाइट हो चुका है। स्टूडियो के अंदर काफी तार काफी सुनने वालों भी रेडियो SBS का ऐप पर ऐप कर रहे हैं, सभी को शुक्रिया धन्यवाद कि आप सभी तार कर रहे हैं, ऐप कर रहे हैं, ऐप द्वारा भी तार कर रहे हैं रेडियो SBS का ऐप के जरिए, सभी को शुक्रिया धन्यवाद। शुभ दिन पेश किया जा रहा है। एक सुनने वालों है ये भजन बस प्रोग्राम में सुनना चाहते हैं मोहम्मद रफी और लता जी की आवाज में।

रफी की आवाज में, मरहूम मोहम्मद रफी और लता जी की आवाज में ये गाना, ये सुंदर भजन आज की ये प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी सुनने वालों के लिए। हमारी एक सुनने वालों की निवेदन पर ये भजन आज की प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी सुनने वालों की सेवा में। फिल्म का नाम था मिस मैरी। चले अब की बार सुंदर भजन जो अब की बार प्रोग्राम में पेश होगा, मोहम्मद रफी और अनुराधा पोटवल, नितिन मुकेश और साथियों के आवाज में। 19, 20

0: सुंदर सा भजन बस प्रोग्राम में पेश की गई मोहम्मद रफी और अनुराधा पोटवाल और नितिन मुकेश की आवाज में ये सुंदर और सुंदर भजन अभी आपने सुना जो प्रोग्राम में पेश की गई है।
1: Dit is Rob Krabbendam met de hoofdpunten van het radionieuws op Radio SBS. Volgens de veiligheidsregio is de grote brand bij een recyclingsbedrijf in Rotterdam-Zuid, die gisteravond begon, inmiddels onder controle. Volgens onderzoek van ABN AMRO werd er deze zomer tijdens code rood door de hitte duidelijk minder geld uitgegeven. Dat was vooral buiten de grote steden te merken, waar meer ouderen wonen die binnenbleven. Abelardo de la Espriella is beëdigd als de nieuwe president van Colombia. De rechtse politicus won de verkiezingen in juni met minder dan 1 procentpunt verschil. En in verband met de droogte mogen schapen en ander vee vanaf vanavond 6 uur niet meer op de dijken van Texel grazen. Het weer droog en zonnig met temperaturen van 23 graden op de Wadden tot maximaal 28 graden in het zuiden bij een zwakke oostelijke wind. Tot zover de hoofdpunten van het radio nieuws op Radio SBS.
2: Nu de verkeersinformatie op Radio SBS.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Flitsmeister meldt een flitser op de A1 Amersfoort Amsterdam bij 40,0. Op de A6 Lelystad Muiden bij 62,2. En op de A37 bij 32,1.
2: Tot zover de verkeersinformatie op Radio SBS. Radio SBS wens je een mooie zonnige dag.
0: सर है 8:00 प्रोग्राम में 2 मिनट व्यतीत हो चुका है। प्रोग्राम भजन यात्रा आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। ये प्रोग्राम सालों से बस आप सभी सुनने वालों के लिए, सभी भक्त प्राणियों के लिए सुबह के वक्त आप हर के लिए बस पेश किया जा रहा है। सुंदर भजन की ओर हम आपको ले चलेंगे। फिल्म राम हनुमान युद्ध फिल्म का नाम है। दिलीप ढोलकिया की आवाज में एक सुंदर सा भजन आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। फिल्म राम

0: K-film 1957 का फिल्म से ये सुंदर सा भजन आज के ये प्रोग्राम में पेश की गए दिलीप ढोलकिया की आवाज में। अभी आपने सुना ये सुंदर भजन जो आप सभी सुनने वालों के लिए बस पेश की गए है। रेडियो SBS का वेबसाइट radio.sbs.nl, उसी वेबसाइट के जरिए आप मेल कर सकते हैं, उसी वेबसाइट के जरिए अपना मोबाइल टेलीफोन के जरिए भी आप रेडियो SBS का ऐप पर भी आप ऐप कर सकते हैं, और उसी वेबसाइट पर रोजाना आपका ज्योतिष शास्त्र, आपका दख हॉरोस्कोप भी होता है, हर एक समय पर आप जाकर देख सकते हैं। चले अपनी बाहर फिल्म गोपी की ओर, उसी फिल्म का एक सुंदर भजन मोहम्मद रफी, मरहूम मोहम्मद रफी की आवाज में पेश किया जा रहा है।
1: हाँ, उल्लू का बट्टा
0: सुंदर भजन होगा फिल्म गोपी से जो पेश किया जा रहा है।

आज ही ये प्रोग्राम में जो पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है और प्रोग्राम भजन यात्रा पेश किया जा रहा है, जिस प्रोग्राम में सुंदर से सुंदर भजन आप सभी सुनने वालों के लिए, सभी भक्त प्राणियों के लिए बस पेश किया जा रहा है। आज की प्रोग्राम में कुछ भजन हम ओरिजिनल फिल्म में से निकाल कर आपके लिए पेश कर रहे हैं। आसरो मीठे की आप सुनकर काफी पसंद करते हैं। मुकेश जी की आवाज में फिल्म संत गणेश्वर, उसी फिल्म से ये सुंदर भजन।

द माइटी मुकेश की आवाज में ये सुंदर और अति सुंदर भजन आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश की गई फिल्म संत गणेश्वर उसी फिल्म से ये सुंदर भजन अभी आपने सुना आज के ये प्रोग्राम में जो पेश की गई है। प्रोग्राम भजन यात्रा आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है और ये प्रोग्राम सालों से बस पेश किया जा रहा है। सोमवार से लेकर के और शुक्रवार तक सुबह 7 बजे से लेकर के 8 बजे तक और वीकेंड में भजन यात्रा प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। शनिवार और रविवार सुबह 8 बजे से लेकर के और 9 बजे तक एक भजन और होगा, उसके बाद आरती भजन बस प्रोग्राम में पेश किया जाएगी। फिल्म बजरंग बली उसी फिल्म से सुंदर भजन महेंद्र कपूर जी की आवाज में पेश किया जा रहा है। भजन का बोल है हिम

भजन पेश की गई। फिल्म का नाम था बजरंग बली। उसी फिल्म में से ये सुंदर सा भजन आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश की गई। आज के प्रोग्राम में हमने ज्यादा से ज्यादा ओरिजिनल फिल्म में से भजन आप सभी के लिए पेश किया है। आशा उम्मीद है कि सुनकर और बेहद पसंद किया है। चले प्रोग्राम में आरती भजन की ओर हम आपको ले चलते हैं। श्री हनुमान जी की आरती आप सुनेंगे और वो भी लता मंगेशकर की आवाज में। और पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम के तरफ से, हमारे तरफ से, हमारा पूरा परिवार के तरफ से आप सभी सुनने वालों के लिए, सभी भक्त प्राणियों के लिए, उन सभी के लिए जो बीमार या लाचार है, सभी दुखित प्राणियों के लिए, सभी बच्चों के लिए और सभी सुनने वालों जो दुनिया की कोने कोने में रेडियो SBS का प्रोग्राम को सुनते हैं, और खासतौर पर हमारी सभी सुनने वालों जो रेडियो SBS का ऐप पर भी ऐप किया है, उनके लिए, उनके पूरा परिवार के लिए, हर एक के लिए शुभ सुबह, शुभ दिन, शुभ वीकेंड के साथ ये सुंदर आरती भजन पेश किया जा रहा है।

Pierce, een hele goede morgen. Nou, wat er 5 minuten bij dit hoe chuka hai. Hamari bahut si sunne walon bas purani nakhme ki intezar mein hai. Garma garam coffee chai ke saath kafi sunne walon bas app kiya hai aur kaha ki hamara garma garam coffee taiyar hai. बस आ जाइए पुरानी नगमे के साथ. शनिवार का दिन है और रेडियो SBS का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं. आपको मालूम होना चाहिए इसी अगस्त महीना में हमारा रेडियो 41 होगा कि उत्तराखंड शहर से ब्रॉडकास्ट किया जा रहा है. काफी सुनने वालों को मालूम है

ये रेडियो चलाया जा रहा है रेडियो SBS ऑल इंडिया के अंदर में, और भी SBS है जैसे कि टेलीविजन भी होता है,

द ईस्ट SBS पहला SBS हॉलैंडीज के अंदर में रेडियो SBS एन 40 यार सुन वालों, यहां से हम आपको ले चलेंगे पुरानी नगमे की ओर, जो आप सभी सुन वालों की सेवा में बस पेश किया जाएगी। और वो भी रोजाना ये प्रोग्राम पेश किया जा रहा है 9 बजे से लेकर के 11 बजे तक, गर्मा गर्म कॉफी चाय के साथ। सबसे पहले आप सभी को स्वागत किया जा रहा है शुभ वीकेंड के साथ, गुड मॉर्निंग के साथ, गुड मॉर्निंग के साथ, गर्मा गर्म कॉफी चाय के साथ। तो चले यहां से पुरानी नखमे की ओर हम आपको ले चलते हैं। पुरानी नखमे आप जरूर सुनते ही रहना। आज की प्रोग्राम पुरानी नखमे का हम शुरुआत करेंगे। ये गाना के साथ जरूर आप सुनते ही रहना। स्टूडियो का टेलीफोन नंबर और रेडियो SBS का एप नंबर 0832 62 66

रेडियो SBS के जरिए खास गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म आस का पंछी, उसी फिल्म का गीत अभी आपने सुना आज की प्रोग्राम में जो पेश की गए हैं। पुरानी नगमे आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है रेडियो SBS के जरिए। हम आपको ले चलेंगे फिल्म बासी की ओर। गीता दत्त की आवाज में अब की बार ये गाना पेश किया जा रहा है।

में गाना पेश की गई फिल्म का नाम था बांसी। गीता दत्त के बाद मोहम्मद रफी, मरहूम मोहम्मद रफी की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

रेडियो वेव्स पे इसके जरिए मोहम्मद रफी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए अब की बार हम आपको ले चलते हैं ये गाना की ओर जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है रेडियो SBS की जरिए। फिल्म का नाम अनमोल घड़ी, अनमोल घड़ी फिल्म का गीत बस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। जरूर ये गाना बस प्रोग्राम में आप सुनते ही रहना जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। नूर जहान की आवाज में ये गाना आप सुनेंगे जो प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है।

पीस की गई फिल्म का नाम अनमोल धरी है। उसी फिल्म का गीत अभी आपने सुना। आज की ये प्रोग्राम में जो पीस की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में, हम आपको ले चलेंगे अपनी बार मुकेश जी की ओर। फिल्म का नाम तीसरी कसम, उसी फिल्म का ये गाना पेश किया जा रहा है।

हार्ट ऑफ द मिलियंस माइकी मुकेश की आवाज में ये गाना पेश की गई। फिल्म का नाम था तीसरी कसम। अब की बार हम आपको ले चलते हैं स्वर्गीय हेमंत कुमार की ओर, और हम आपको ले चलेंगे 1962 का फिल्म का नाम 20 साल बाद।

अगेंस्ट माइकी मुकेश की आवाज में फिल्म दीवाना का गीत पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। मुकेश के बाद हम आपको ले चलेंगे किशोर कुमार की ओर। किशोर कुमार की आवाज में फिल्म गति पतंग का गीत अब की बार प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है। फिल्म गति पतंग सॉन्ग बाय द मैन विद एवरग्रीन वॉइस किशोर कुमार।

गति पतंग का गीत भी इसके गए किशोर कुमार की आवाज में। ये गाना भी आपने सुना जो आज के प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। सुनने वालों रेडियो SBS का वेबसाइट रेडियो SBS.NL उसी वेबसाइट के जरिए अपना मोबाइल टेलीफोन टैबलेट आईपैड कंप्यूटर के जरिए प्रोग्राम भी आप सुन सकते हैं। मोहम्मद रफी फिल्म का नाम द थ्री।

0: maar hoe Mohammed Rafiki hebben aan Spek de film The Train Kagi Peace gegeven. Asro bhi the gana aap sabhi ne suna aur behad pasand kiya hai. Ek gana ki aur hum aapko le chalenge, film ka naam Purab aur Pachim. महेंद्र कपूर और आशा जी की आवाज में ये गाना.
1: गाओ
2: आओ ओए ट्विंकल.

किम उसी फिल्म का गीत बस प्रोग्राम में पेश की गए महेंद्र कपूर और आशा जी की आवाज में। खासतौर पर दलित मनोज कुमार का खास फिल्म है फिल्म पूरब और पश्चिम जो प्रोग्राम में पेश की गए। चले प्रोग्राम में फिल्म संगम की ओर।

रेडियो SBS के जरिए फिल्म संगम का गीत आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई। आसरो उम्मीद है गाना सुनकर और बेहद पसंद किया है। मुकेश और आशा जी की आवाज में अब की बार ये गाना हम आपको ले चलते हैं फिल्म का नाम एक बार मुस्कुरा दो।

bu pis ore aşa dikhi avans me ye gana bus program be pis ki gaya aap sabhi sunne walon ki seva me chale gana jo program me pis kiya ja raha hai lata mangeshkar ki avans me aur film ka naam saathi 1968 ka film 1968 का फिल्म है फिल्म साथी उसी फिल्म का गाना पेश किया जा रहा है लता मंगेशकर की आवाज में

द माइटी मुकेश की आवाज में ये गाना बस पेश की गए पहचान फिल्म का नाम 1970 का फिल्म नहीं 1954 तक का फिल्म फिल्म में काम किया है और गाना को एक्टिंग किया है मनोज कुमार मनोज कुमार का एक्टिंग किया हुआ गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आलोकमार शहर की रहने वाली कमला की मांगी हुई गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में शुभ दिन शुभ वीकेंड और रेडियो SBS का प्रोग्राम जरूर और जरूर सुनते ही रहना मुझे भी मालूम है कि काफी सालों से आप रेडियो SBS का प्रोग्राम को सुनते हैं कुछ समय था विक्रम शहर में प्रोग्राम को आप

पुरानी फिल्म सावन का गीत पेश किया जा रहा है। वैसे स्टूडियो के अंदर काफी तार अंदर आने लगा है और काफी सुनने वालों ऐप करने लगा है हमारा रेडियो SBS का ऐप।

है जो हमारा प्रोग्राम काफी सालों से सुनते हैं और वो है देन हाग शहर की रहने वाली कमला। और कमला अपना मन चाहत गीत गाना जो उनको बहुत पसंद है आज की प्रोग्राम में सुनना चाहते हैं रेडियो के जरिए। कहते हैं हमेशा लोग की रेडियो के जरिए जब गाना पेश होते हैं तो सुनने में और भी मजा आता है। तो चले लता जी की आवाज में ये गाना हूं।

लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म सावन का गीत पेश की गए दनहा शहर की रहने वाली कमला ये खास गाना आज की प्रोग्राम में मांग किए। गाना को काफी पसंद करते हैं, कुछ यादें भी है इस गाना के साथ, और इसलिए आज की प्रोग्राम में ये गाना भी मांग किया। सावन फिल्म का नाम, लता जी की आवाज में ये खूबसूरत गाना बस प्रोग्राम में मांग किए। शुभ दिन पेश किया जा रहा है, शुभ वीकेंड, और रेडियो SBS का प्रोग्राम जरूर सुनते ही रहना। देश विदेश में भी प्रोग्राम सुनने वालों बस सुनते हैं। जिस तरह से इस वक्त मॉरिशस में दुष्यंत जिंगरे हमारा प्रोग्राम भी फॉलो कर रहे हैं, मॉरिशस में हमेशा प्रोग्राम को सुनते हैं, खासतौर पर पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम। और आज की प्रोग्राम में आप सभी सुनने वालों के लिए एक खास गाना मांग किया है, मरहूम मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म का नाम चिराग। मॉरिशस का रहने वाला दुष्यंत जिंगरे का मांगी हुई गाना।

चिराग फिल्म का नाम मोहम्मद रफी की आवाज में ये गाना बस पेश की गई। मॉरिशियस देश का रहने वाला दुष्यंत जिंगरी ये खास गाना आप सभी सुनने वालों के लिए मांग किया जो आज के प्रोग्राम में पेश की गई है। दुष्यंत आपको भी शुक्रिया धन्यवाद कहा जा रहा है। शुभ दिन और शुभ वीकेंड। हाँ, कहने की जरूरत नहीं है कि रेडियो SBS का प्रोग्राम सुनते ही रहना, इसलिए हमें मालूम है कि हमेशा आप मॉरिशस में हमारा रेडियो SBS का प्रोग्राम को सुनते हैं जो हॉलैंडिस से ब्रॉडकास्ट किया जा रहा है। 41 साल हो गया है कि ये प्रोग्राम शेरुद्रेख हॉलैंडी से बस पेश किया जा रहा है। एक बार फिर से शुभ दिन शुभ वीकेंड। चलिए अब की बार किशोर एन लता जी की आवाज में गाना पेश किया जा रहा है और ये गाना आज की प्रोग्राम में मांग करने वाली है। हम आपको ले चलते हैं उडन शहर की ओर। उडन शहर से खास तौर पर लैला लक्ष्मण ये काफी प्यार भरी गाना आज के ये प्रोग्राम में मांग किया है। फिल्म का नाम कर्ज 1980 का फिल्म नई हंती रोंद तख तक का फिल्म है किशोर कुमार एन लता जी की आवाज में। उडन की रहने वाली लैला लक्ष्मण की मांगी हुई गाना

किशोर कुमार और लता जी की आवाज में ये गाना आज की प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। फिल्म का नाम था कर्स, उसी फिल्म का गीत मांग करने वाली थी उडन शहर की रहने वाली लैला लक्ष्मण। लैला लक्ष्मण ये खूबसूरत गाना आज की प्रोग्राम में मांग की है। शुभ दिन पेश किया जा रहा है और शुभ वीकेंड। रेडियो SBS का प्रोग्राम इसी तरह से बस सुनते ही रहना। ऑल इंडिया की कोने कोने में, दुनिया की कोने कोने में सुनने वालों बस प्रोग्राम सुनते हैं। हम देख रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में काफी सुनने वालों है जो हमारा प्रोग्राम इस वक्त फॉलो कर रहे हैं। सभी को जहां जहां पर भी आप सभी प्रोग्राम को सुनते हैं जरूर सुनते ही रहना। एक गाना आज के प्रोग्राम में पेश होगा, फिल्म का नाम श्री 420 फिल्म का गीत पेश होगा मन्ना डे की आवाज में। दिल का हाल सुने दिल वाला, हाँ दिल का हाल सुने दिल वाला। रोटरडम नॉर्थ की रहने वाली, शीला की मांगी हुई गाना बस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है।

उसी फिल्म का गाना बस पेश की गई 1955 का फिल्म 1955 का फिल्म का गीत अभी आपने सुना। रोटरडम नोट की रहने वाली शीला की मांगी हुई गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई। शीला आपको भी शुभ सुबह शुभ दिन पेश किया जा रहा है शुभ वीकेंड के साथ और रेडियो SBS का प्रोग्राम जरूर

और एक गाना आज की प्रोग्राम में माइटी मुकेश की आवाज में मांग किया है उत्तराख लाइट रैन गिरधारी स्त्रात का रहने वाला राजन गिरधारी, तो चले मिलकर सुनते हैं ये गाना।

ये आवाज में ये गाना पेश की गई और गाना को मांग करने वाला था उत्तरेख लाइट से रैन गिरधारी स्त्रात का रहने वाला राजन गिरधारी का मांगी हुई गाना आज की ये प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों के लिए। बस आपको भी शुभ सुबह शुभ दिन शुभ वीकेंड पेश किया जा रहा है और रेडियो SBS का प्रोग्राम जरूर और जरूर सुनते ही रहना। 8 मिनट व्यतीत हो चुका है प्रोग्राम में सुबह साढ़े 10:00। एक गाना प्रोग्राम में पेश होगा फिल्म शोला और शबनम 1961 का फिल्म है 1963 का फिल्म। उसी फिल्म में एक बड़ी ही खूबसूरत गाना पद्मश्री मोहम्मद रफ़ी मरहूम मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में लाया गया है और गाना को मांग करने वाली है आज की प्रोग्राम में मांग किया है लेवार्दन शहर की रहने वाली मफराव छेड़ी श्रीमती छेड़ी ने मांग किया है ये खास गाना आज की प्रोग्राम में। तो चलिए मिलकर गाना को सुनते हैं।

गाना आज की प्रोग्राम में पेश की गई फिल्म शोला और सपनम, उसी फिल्म का गाना भी आपने सुना मरहूम मोहम्मद रफी की आवाज में। लेवार्दन शहर की रहने वाली मफराव छेदी श्रीमती छेदी ये खास गाना आज की प्रोग्राम में मांग किया। हंसरो मीठे गाना सुनकर और काफी पसंद किया है। शुभ दिन, शुभ सुबह और एक शुभ वीकेंड पेश किया जा रहा है। और इसी तरह से रेडियो SBS का प्रोग्राम जो है जरूर सुनते ही रहना। अब की बार गाना जो पेश होगा फिल्म का नाम नाइट इन लंदन। एक बार फिर से मरहूम मोहम्मद रफी प्रोग्राम में होगा। विश्वजीत का एक्टिंग किया हुआ गाना होगा और गाना को आज की पुरानी फिल्मी संगीतों का प्रोग्राम में मांग किया है। फेल्थोफन शहर की रहने वाली चंद्रा भोला सिंह के मांगी हुई गाना बस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है।

विश्वजीत का एक्टिंग किया हुआ गाना, फिल्म का नाम नाइट इन लंदन। मरहूम मोहम्मद रफी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में फेल्थोफन की रहने वाली चंद्रा भोला सिंह की मांगी हुई गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए चंद्रा भोला सिंह आपको शुभ सुबह, शुभ दिन, शुभ वीकेंड पेश किया जा रहा है और रेडियो SBS का प्रोग्राम जरूर है और जरूर सुनते ही रहना। 11 मिनट बाकी है प्रोग्राम में, 11 बजे में दो गाने और पेश होगा सुनने वालों की मांगी हुई गाना, पुरानी फिल्मी संगीतों का प्रोग्राम है, उसके बाद पुरानी फिल्मी संगीतों का प्रोग्राम खत्म समाप्त किया जाएगी। सुनने वालों, हर एक काम काज के लिए आपकी फरमाइश हुआ, सस्ती दामों में आपकी फरमाइश पेश किया जा रहा है 5 यूरो पर फरमाइश। तमाम खबरें, तमाम रिक्लाम भी सस्ती दामों में, बोडम प्राइस में बस पेश किया जा रहा है और उसके साथ मृत्यु समाचार, मौत की खबर आपको देना है। भगवान ना करे, अल्लाह ना करे, आपके घर पर दुख है, गमी है और आप मृत्यु समाचार देना चाहेंगे तो जरूर रेडियो SBS से आप कॉन्टेक्ट कीजिए। टेलीफोन नंबर जो 24 घंटा लगातार आप सभी के लिए होता है, न सिर्फ टेलीफोन नंबर लेकिन हमारा मेल और रेडियो SBS का ऐप, मेल और ऐप पर भी आप 24 घंटा लगातार आप हर एक इन्फो ले सकते हैं। चलिए गाना आपकी बार पेश होगा आशा जी की आवाज में, सावन की घटा फिल्म का नाम है और गीत को मांग करने वाली सुतमेर शहर की रहने वाली नलिनी की मांगी हुई गाना बस पेश किया।

अच्छा जी की आवाज में फिल्म सावन की घटा उसी फिल्म का गीत बस प्रोग्राम में पेश की गई और ये खास गाना को मांग करने वाली थे सुतमेर शहर की रहने वाली नलिनी नलिनी की मांगी हुई गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आसरो में थे नलिनी गाना आपने सुना और काफी पसंद किया है शुभ सुबह शुभ दिन शुभ वीकेंड के साथ बस पेश किया जा रहा है एक आखिरी पुरानी फिल्म का गीत प्रोग्राम में पेश होगा और आज की प्रोग्राम में पहली मर्तबा स्टूडियो की ओर तार किया है देनहाग शहर की रहने वाली निर्मला निर्मला ने तार किया है और मुझसे कहा कि हम भी एक गाना मांग कर सकते हैं प्रोग्राम में जरूर हर एक को मौका दिया जा रहा है गाना मांग करने के लिए लेकिन आज की प्रोग्राम का ये आखिरी सुनने वालों की मांगी हुई गाना पेश किया जा रहा है और आखिरी पुरानी फिल्म का गीत भी फिल्म अनारी का गीत पेश होगा लता जी की आवाज में चले मिलकर सुनते हैं देनहाग शहर की रहने वाली निर्मला की मांगी हुई गाना और गाना का बोल है तेरा जाना फिल्म अनारी लता जी की आवाज में

0: पुरानी फिल्म अनारी का गीत पेश की गई लता जी की आवाज में अभी आपने सुना। और खास तौर पर देनहाग शहर की रहने वाली निर्मला, निर्मला ये खास गाना आज की खास प्रोग्राम में मांग किया जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई है। पहली बार स्टूडियो की ओर तार किया और गाना मांग किया। आपको शुभ सुबह, शुभ दिन और एक शुभ वीकेंड पेश किया जा रहा है और रेडियो SBS का प्रोग्राम इसी तरह से सुनते ही रहना और हमेशा भाग लेते ही रहना ये सब प्रोग्राम में। पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम खत्म होने पर आ गई है। कल सुबह 9 बजे से फिर पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम आप जरूर और जरूर सुनते ही रहना।
1: En nu reclame, nieuws en het weerbericht op Radio SBS.

रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। 11:11 व्यतीत हो चुका है। शनिवार का दिन 7 अगस्त का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। गर्मी सा मौसम बाहर और आहिस्ता आहिस्ता और भी गर्मी होने लगा है।

रेडियो SBS के जरिए ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। सुनने वालों स्टूडियो का टेलीफोन नंबर और रेडियो SBS का एप नंबर 03-262-66-11 या तो अपना मोबाइल टेलीफोन पर मोबाइल फोन पर आप जाइए रेडियो SBS का वेबसाइट पर radioSBS.NL और उसी वेबसाइट के जरिए भी आप ऐप कर सकते हैं।

ना तेरा साथ मरते दम तक गाना जो प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS की जरिए अभी आपने सुना। बहुत सी सुनने वालों बस हमारा रेडियो SBS का ऐप की जरिए तार कर रहे हैं, सभी को हम शुक्रिया धन्यवाद कहते हैं आपकी तार के लिए। कुछ बातें हुए, कुछ हंसी मजाक हुए। एक सुनने वालों है जो ये गाना सुनना चाहते हैं, कहा कि मौसम खूबसूरत सुहाना मौसम है तो मेरेंगे स्टाइल में ये गाना प्रोग्राम में ओ दिलदार बोलो एक बार या मेरा प्यार।

ये समा शमा है प्यार का गाना जो प्रोग्राम में पेश की गई रेडियो SBS की जरिए अभी आपने सुना। असर उम्मीद है गाना सुनकर और काफी पसंद किया है। चले न्यू फ्यूजन में ये गाना पेश किया जा रहा है। पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए।

हीरा मुझे मिल जाए। न्यू फ्यूचर में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। 10:50 स्टूडियो टाइट हो चुका है। चले एक गाना बस पेश किया जा रहा है रेगे रिमिक्स में। स्पेशल गुजारिश सुतमेर शहर की रहने वाली नलिनी की गुजारिश पर।

रिमिक्स। बस बीच की गई फिल्म सावन की घटा, उसी फिल्म का गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई। और खासतौर पर सुतमेर शहर की रहने वाली नलिनी की गुजारिश पर यह गाना आज की प्रोग्राम में पेश की गई। द बेस्ट बॉलीवुड हिट्स हमेशा आपके लिए रेडियो एसबीएस के जरिए।

प्यार दो आफ्रो हाउस रेमिक्स बस प्रोग्राम में पेश की गए। एक दो नखमे और हैं, उसके बाद खबरें पेश होगा, खबरें के बाद लोकल टाइम का प्रोग्राम। शनिवार का दिन 8 तारीख अगस्त

रेडियो SBS के जरिए ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी सुनने वालों की सेवा में। एक गाना और होगा, उसके बाद हम आपको ले चलेंगे खबरें की ओर। खबरें के बाद लोकल टाइम का प्रोग्राम बस पेश किया जाएगा।

रहा है और लोकल टाइम का प्रोग्राम जरूर है और जरूर सुनते ही रहना जो रेडियो SBS के जरिए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है।

खुली चलते हैं जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। एक गाना आप सुनेंगे खास तौर पर उमर की आवाज में, जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। उमर की आवाज में ये गाना।

रहे सभी सुनने वालों की सेवा में आसरो मीठे किए गाना हम सभी ने सुना और बेहद पसंद किया रेडियो SBS की जरिए जो पेश की गई। आज का लोकल टाइम का प्रोग्राम जरूर है और जरूर सुनते ही रहना जहां जहां पर भी आप सभी इस वक्त प्रोग्राम को सुनते हैं। चले अगला गाना जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है तो फेमस का संगीत पर गाना को आप सुनते ही रहना।

आज की प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आसरो मीठे की गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। चलिए अब की बार लोकल टाइम का प्रोग्राम में गाना पेश किया जा रहा है आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। एक लाइव रिकॉर्डिंग किया हुआ गाना होगा जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में संजय की आवाज में पेश किया जा रहा है। फिल्म रास्ते का पत्थर, उसी फिल्म का टाइटल सॉन्ग संजय की आवाज में।

रेडियो SBS के जरिए संजय की आवाज में ये गाना बस पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए आज की लोकल टाइम का प्रोग्राम में हम आपको ले चलते हैं विम डमरी की ओर। गाना जो अब की बार पेश किया जा रहा है, मुझे इश्क है तुझी से। रेडियो SBS की जरिए प्रोग्राम पेश किया जा रहा है, हर एक को खबर कीजिए रेडियो SBS के बारे में।

भीम डमरी की आवाज में ये गाना पेश की गए। मुझे इश्क है तुझे से मेरी जान जिंदगानी है। रेडियो SBS की सरिये ये गाना बस प्रोग्राम में आज की लोकल टाइम का प्रोग्राम में पेश की गए है। सुनने वालों स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 03-22-66-66-11 और रेडियो SBS का प्रोग्राम जो है अपना मोबाइल टेलीफोन टैबलेट आईपैड की जरिए कंप्यूटर की जरिए भी आप सुन सकते हैं रेडियो SBS.NL वेबसाइट की जरिए और सभी इंटरनेट रेडियो की जरिए दुनिया की कोने कोने में ये प्रोग्राम को आप सुन सकते हैं रेडियो SBS का। मरहूम नदीम खान की आवाज में अब की बार ये गाना पेश किया जा रहा है और गाना का बोल है बहुत दूर चले जाना है।

रेडियो SBS के जरिए मरहूम नदीम खान की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए प्रोग्राम में गाना की ओर हम आपको ले चलते हैं। उमर और खास तौर पर बाबू मैन की आवाज में गाना बस पेश किया जा रहा है। एक हॉटेस्ट गाना चटनी गाना बस।

सभी सुनने वालों की सेवा में आज की इस लोकल टाइम का प्रोग्राम में चटनी गाना बस पीस के गए चले एक कासे को मेडली की ओर हम आपको ले चलते हैं आपकी बार। हाँ, प्रोग्राम में कासे को मेडली पेश किया जा रहा है रेडियो SBS के जरिए। Deel 30, 2, 62.

आज के प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS के जरिए। सुनने वालों स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 03-262-66-11। चले प्रोग्राम में ये गाना की ओर है, जॉनी और इंदिरा की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है कि तुमने

हैं। रेडियो SBS के जरिए ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई। आसरा उम्मीद है कि आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। चलिए प्रोग्राम में बाबला एंड कंचन की

babla aur kanchan, khas toor par babla ka sangeet par aur kanchan ki awaaz mein ye gana pesh ki gaya. Aap sabhi aur sabhi sunne walon ki seva mein aasra umeed hai ki gana aap sabhi ne suna aur behad pasand kiya hai. रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है शहडोल तरफ से. ये प्रोग्राम बिल्कुल लाइव आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है. हॉलैंडीज का सबसे खूबसूरत शहर से फनाइटेड मोस्ट स्टार्ट फन नीदरलैंड यूट्रेक्ट शहर से ये प्रोग्राम पेश किया जा रहा है.

और रेडियो SBS के जरिए ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आसर उम्मीद है कि गाना आपने सुना और बेहद पसंद किया है रेडियो SBS के जरिए जो पेश की गई है। चलिए प्रोग्राम में हम आपको ले चलते हैं अब की बार ये गाना की ओर जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है और होगा अब की बार फिर से उमर साथ में मार्सेल फन ब्यूरन। चलिए प्रोग्राम में ये गाना मिलकर सुनते हैं। Marcel van Buren en Omar programmeren.

आवास में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई है। रेडियो SBS के जरिए लोकल टाइम का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है और इस प्रोग्राम को जरूर आप सुनते ही रहना। चलिए अब की बार ईबो की ओर हम आपको ले चलते हैं।

इबो की आवाज में ये गाना आज की प्रोग्राम में पेश की गई लोकल टाइम की प्रोग्राम में रेडियो SBS की जरिए भी आपने सुना आसरो बैठे सुनकर और बेहद पसंद किया है। बहुत से सुनने वालों बस इस वक्त प्रोग्राम को सुनते हैं जरूर और जरूर इस प्रोग्राम को सुनते ही रहना। चलिए प्रोग्राम में अब की बार ये गाना की ओर

की गई सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 032-62-66-11। सुधीर प्रोग्राम में

ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए हैं। लोकल टाइम का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है रेडियो SBS के जरिए। हम आपको ले चलते हैं उमर की ओर और अब की बार ये गाना पेश किया जा रहा है किस लिए मैंने प्यार किया।

0: पर की आवाज में ये गाना उस प्रोग्राम में पेश की गए। आसरो मीठे की गाना आप सभी ने सुना और काफी पसंद किया है। लोकल टाइम का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है रेडियो SBS के जरिए। चले प्रोग्राम में रेमोंड की आवाज में गाना पेश किया जा रहा है और गाना का बोल है मोहन की मुरलिया बाजे।
1: मोहन के मुरलिया
0: रेमोंड।

sbs.nl उसी वेबसाइट के जरिए हमारा ये प्रोग्राम भी आप सुन सकते हैं अपना मोबाइल टेलीफोन टैबलेट आईपैड कंप्यूटर के जरिए। तो चलिए अब की बार ये गाना मीका सुखू और तचना की आवाज में पेश किया जा रहा है।

रेडियो SBS के जरिए ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। चले आज के लोकल टाइम की प्रोग्राम में एक आखिरी लोकल गीत पेश किया जा रहा है और इसी गाना के साथ हमें इजाजत और आज्ञा दीजिए। आप सभी सुनने वालों को बाकी का दिन शुभ वीकेंड और रेडियो SBS का प्रोग्राम जरूर है और जरूर सुनते ही रहना। बैठा आपका खिदमत गुजार रबीन जो आप सभी सुनने वालों को सेवा और खिदमत किया।

0: हेलो नमस्ते और आदाब, मैं हूँ आपकी आर जे अंशुलि रामलाल, जो आपका तहे दिल से स्वागत करती है प्रोग्राम गीतों के लहर में। हेलो अलमाल, दिस इज यू आर जे अंशुलि रामलाल, दी यू फॉर हार्ट वेलकम हेट इन इट प्रोग्रामा गीतों के लहर। Wilt u reageren? Kan het altijd? Surf maar naar de website www.radiosbs.nl of bel gerust met de studio naar 032-62-66-11. Voor alle andere info kunt u bellen met 032-65-65-60. En beginnen we meteen met het eerste liedje van vandaag en dat is...
1: Natural night, do you feel alright? Wanna natural night?

कैसा है चिनाब का, इस गजंगा दौर किशोर कुमार। एंड आउट द फिल्म चलती का नाम गाड़ी कम गजंगा दौर किशोर कुमार वेयर एक लड़की भीगी भागी सी।

वो बारिश की बूंदे इज आउट द फिल्म हाफ गर्लफ्रेंड, एन फिल्म फन श्रद्धा कपूर एंड अर्जुन कपूर, एंड आउट द फिल्म प्यार तो होना ही था कॉम्ड गुसंग दौर आशा भोसले एंड विनोद राठौर, प्यार तो होना ही था द टाइटल सॉन्ग।

कौन मैं? हाँ तुम, बस तुम। ओफो, वास आउट द फिल्म अजनबी एंड आउट द फिल्म 14 फेरे कंठ सहंदो रेखा भारद्वाज राम सीता संग द्वारे।

मधुबन में जो कन्हैया किसी गोपी से मिले, कभी मुस्काए कभी छेड़े कभी बात करे, राधा कैसे न जेले बस अर्ध फिल्म लगान। एन अर्ध फिल्म प्यार तूने क्या किया कॉम्थ सॉन्ग दौर सोनू निगम एंड अलका याचिनिक द टाइटल सॉन्ग।

सुना है तेरे दिल पे मेरे, कहीं ना कहीं नाम लिखा है इस सॉन्ग दो श्रेया घोषाल एंड क्वाम आउट द फिल्म सनक, आउट द फिल्म टाइगर जिंदा है कम दाग सॉन्ग दो आतिफ असलम दिल दिया गल्ला।

अब तो है तुमसे हर खुशी अपनी, ये चाहे फिल्म अभिमान है हंसा हुंदर लता मंगेशकर। हाँ उदा फेरदर मैथ आउट द फिल्म बॉम्बे। कहना ही क्या, ये नैनिक अनजान से जो मिले।

आ कहीं दूर चले जाएं हम, वॉज आउट द फिल्म लावारिस। एंड आउट द फिल्म भारत इज het volgende liedje in het programma गीतों के लहर, gezongen door Abhijit Srivastav, इश्के दीप चाचनी।

हम आप में कुछ हो गया, कुछ मिल गया, कुछ खो गया इज द टाइटल सॉन्ग फ्रॉम द फिल्म हम तुम पे मरते हैं, खुशहुदूर लता मंगेशकर एंड उदित नारायण। चोरी चोरी सपनों में आता है कोई इस द फिल्म चल मेरे भाई एंड इस खुशहुदूर अलका याचिनिक एंड अभिजीत। चल मेरे भाई इज अ फिल्म फन संजय दत्त, करिश्मा कपूर एंड सलमान खान। चोरी चोरी इज इट फोन लीजिए इन het programma Gietonkelen Herfia Radio SBS.

सैलरू सैलरे, क्या बोला फिर बोला रे, इस फिल्म का शाहरुख खान है, ऐश्वर्या राय साहब में चंद्रचूर सिंह. द फिल्म घाट कम दाहर उदित नारायण अलका याचनिक सोनू निगम एंड जसपिंदर नरूला. झुमका चांदी दा चांदी दा झुमका चांदी दा.

होंठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो, इस गजोंग दो जगजीत सिंह एंड कवा मैं द फिल्म प्रेम गीत एन गजोंग दो किशोर कुमार एंड आनंद कुमार कोम्त प्यार लो प्यार लो।

तुम से ही वास आउट द फिल्म सड़क द्वे फान आलिया भट्ट एंड आउट द फिल्म वादा कोम्त मैं इश्क उसका वो आशिकी है मेरी इस खसों दूर कुमार सानू एंड अलका याचनिक।

0: मैं चलता हूँ, मुझे जाने दो, मैं चलता।
1: सुन बलो, हमारा आज का प्रोग्राम बस यहीं से खत्म समाप्त होने पर आ गए हैं। आज के प्रोग्राम जो है सुनने के लिए लाख लाख शुक्रिया, धन्यवाद। आसरा उम्मीद है प्रोग्राम सुनकर और काफी पसंद किया है। मैं आपका खिदमत गुजार रबीन। हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए, इन्फो के लिए टेलीफोन नंबर है 0352656560। बस आप सभी सुनने वालों से हम फिर मिलेंगे।

0: मुख्तार जी कहानी अभी खत्म नहीं करते हैं।
1: नहीं नहीं
0: नहीं करना चाहिए ना,
1: इतना इतना खूबसूरत गाना है। हाँ। तो इतना और इतना जब खूबसूरत ऑडियंस हमारे साथ है तो इस गाने का एक बीच का अंतरा जो हमने नहीं गाया है वो हम सिर्फ कीबोर्ड का सुर लेकर गाते हैं और जो मुखड़ा है आप सब हमारे साथ मिलकर गाइए, तभी ये सच्ची श्रद्धांजलि इन महान कलाकारों को होगी।